0: नगरपालिका टाउन मा का कार्यक्रम छ न बे या छ न
1: दे हर्ड द न्यूज दैट फ्रॉम द कम्युनिटी एवरीबॉडी गोइंग टुगेदर टू मेक द इंजीनियरिंग थिंग्स देन इट माइट बी हैपन